याद तेरी बस आंदी जावे पर तेरी कोई खबर ना आवे दिल मेरा हुण डुबदा जावे बड़ा सता तू।